साहब जी ने बड़ा वधिया दृष्टांत दिता, कहन लगे इस देह दे उपर, इस शरीर दे उपर तू कपड़े पहनदा है ना, ते आखर धो धो के पहन पहन के कपड़े पुराने हो जांदे ने, जर्जरे हो जांदे ने, एक दिन फट जांदे ने, तू त्याग दिना है ना। जैसे बस्तर दे उडाने दिन दो चार पुराहा, थोड़े समय बाद वो भुर जांदे ने, खीण

0: दूसरा दृष्टांत कि किसी कंध के उपर कदों तक आप दौड़ ला सकते हैं, आखिर जदों कंध का अंत आ जाना है साड़ी दौड़ मुक जानी है। दो दृष्टांत, एक शरीर के उपर पहनिया कपड़ा ते दूसरा कंध के उपर दौड़ना। पावन बाणी के सतगुरां ने होर थावां ते भी दृष्टांत दिते ने, कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना, कबीर गर्भ न कीजिए देही देख सुरंग, आज काल तज जाओगे ज्यों कांचरी भुयंग। जिने सप अपनी करकुंज त्याग दिंदा है, तू अपने तन दे कपड़े उतार दिंदा है, एक दिन आत्मा दे उपर यह शरीर का जेड़ा कवच है यह भी छड़ के तू इस संसार तो तुर जाना है। हुण गल दौड़ दी ते बाबा फरीद जी ने शब्द वरते, कहण लगे फरीदा कोठे उपर धौंकना, कहिंदे तू कदों तक कोठे दी छत दे उपर दौड़दा रहेगा। फिर नींदड़ी निवार, आ जिहड़ी परमात्मा तो गफलत करके तू मोह माया दी नींद वे सुत्ता पिया ना, इहनू त्याग, क्योंकि कोठे उपर धौंकना फिर नींदड़ी निवार, जो दे लद्दे गाणवे गए वलाड़ वलाड़, आ जिहड़े तैनू गिणती मिणती दे दिन मिले ने इह ते तेरे नालों भी ज्यादा दौड़ रहे ने, वड्डियां वड्डियां छालां मार के समा लंघ रहा। भाई वीर सिंह होणा भी कहा ना, रही वास्ते घट समय ने इक ना मनी, फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कनी, त्रिखे अपने वेग गया टप बन्ने बनी। कहण लगे ये खैर न जात न जानदा, लंघ गया ना मुड़के आमदा, इस करके समय नू संभाल, कंध दे उपर भी नठिए दौड़िए ते आकर उदा भी अंत आ जांदा है, तेरे भी सुवासां दी गिनती एक दिन मुक जानी है।
1: जैसे अंब कुंड कर रखियो परत सिंध गल जाहा,
0: जिवें किसे हौज विच कुंड विच पानी पा के रखिया होवे ते उहदे विच आपां लूण पा दईए, कहण लगे वह लूण पैंदिआं ही पानी विच गल जांदा है। कहिंदे लूण दी डली समुंदर दा अंत पाउण गई सी ते अज तक मुड़ के वापस नहीं आई। इसे तरह साड़ी होंद केवल पानी विच पए हुए लून दी तरह, जां इहनू होर समझ लईए कि प्रभु प्यारिआं अरदास कीती मालक जी कि जे कोई मिट्टी नूं धोण लग पवे ते धो धो के तां मिट्टी दी होंद खत्म हो जाणी है, साड़ी तां इह हालत है, माटी का क्या धोपै स्वामी मानस की गत एही। जिवें किसी घड़े विच पानी पाया ते बूंदा टपकदियां ने, छिन छिन औध ब्यात है फूटे घट ज्यों पानी, इवें मनुख की जिंदगी जिहड़ी है वह बती

सब सुरति मैल सुरतक माई, सब कीमत मैल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तलवडियाई। सब सत सब तप सब चंगियाईयां, सिद्धां पुरखां कियां वडियाईयां, तुद रहण सिद्धि कनै न पाईया, कर्म मिलै नाहीं ठाक।

सतगुर सतपुरखाल बिनो करो गुरुपास। हम कीरे करम सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरुदेव मोकौ राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास राउ। हर जन केवड़ भाग वडेरे जन हर हर शरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै द्रभदास मिल संगत गुण प्रगास। जन हर हर हर रस नाम न पाया ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन हर पाया ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिख्या लिखास। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया मैल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवां काहे रे मान चित वह उदम जा आहर हर जियो परया। सैल पत्थर मह जंतो पाए ताकारी जित आगै कर धरिया।

तद बिन वरना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेवा है जो सेवा तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जान जुगमय सुखवासी से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तैन तूटी जम की फासी जैन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ हैं बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जीवड़ वरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरतै जी तू आपे करहे सोई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै कर दे के जी जो सब सह का जन होई आस्था महला चौथा तू करता सजार मैं डांसाई जो तुम पावै सोई थीसी जो तू देह सोई हम पाई राओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिस नौ कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सबना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझे त्याव है मेरे साथ।

एक मूर्त अनेक दर्शन तीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव न जानही ये वेद और कतेब रूप रंग न जात पात सुजानही कह देव तात मात न जात जाकर जन्म मन बेहीन चक्र बकर फिरे चतुर चक मानही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सब दिन थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख पार

हीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्म काम तो परम रहते अभूत अलख अभेद अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम

अपरूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत। गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप अस्तूत।

इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग आभा अभंग गत नित्य अपार गुण घन उदार मुन घन प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलिश्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वाभरणाढ्य अंडंड बाढ़ पाशा फरमांदे ने गुण गन उदार गुण का मतलब है स्थिरता विशेषता है गन का मतलब है बहुत ही उस वाहिगुरु विच बेअंत वडियाइया हैं उदार वो बड़ा खुले दिल वाला है वो साडे वांगू कंजूस नहीं वो बड़ा उदार है देख लो आसन लोए लोए भंडार जो कुछ पाया सो एक ददा दाता एक है सबको देवन हार देंदे टोट ना आवई अगणत भरे भंडार गुण गन उदार महिमा अपार उसकी जो वडियाई है वो अपार है उसकी कोई सीमा हद नहीं आसन अभंग उदा जेड़ा तख्त है आसन कहने बैठने की जगह वो अभंग है उदा कदे नाश नहीं होंदा कोई उन्हें नाश नहीं कर सकता उपमा अनंग उदी जो उपमा है वो भी उची तो उची है और अनंग उदा साडे वर्गा शरीर नहीं पावो अंगा तो रहता है अनुभव प्रकाश वो सुते प्रकाश है अपने आप तो आप ही ज्ञानवान है निस दिन अनास इस कहने रात में दिन कहने दिन उदा जो प्रकाश जो ज्योत है वो अनास है भाव वो कदे नाश नहीं होती अजान बाह ये अर्थ विद्वाना वालों बचपन तो सुनते आया कि बहुत लंबिया बाहां ने उदे वसीले उदे साधन बहुत लंबे ने वो अख फरकन के समय भी जो चाहे कर सकता है रोज तुसी सुखमनी साहब पढ़ते हो हरन भरन जाका नेत्र थोर जिसका मंत्र न जाने होर हर की गत न को जाने जोगी जति तपी पच हारे अरबों लोग सियाने अख फरकन के समय भी जो चाहे सो कर सकता है इसलिए आजान बाह उनियां लंबियां बावां

हरे हरियं करियं ननामे अकामे गोविंदे। देखो ये भी बड़ा सुंदर चाल है छंदी, पर असी क्योंकि गुटका साहब से देखते नहीं, ध्यान साडा किसी और पासे चला जाता है। जे उत्ते देख के पार करो तो बड़ा आनंद आएगा। गोविंदे मोका।

पारे हरियं करियं नामे अकामे गोविंदे तो मतलब है सारी सृष्टि के पालन वाला इहदे कई अर्थ विद्वानों ने किए गोविंद गोपाल सारी धरती की रक्षा करन वाला सारी धरती नू पालन वाला सब इंद्रियां नू सत्या देन वाला जे मेरे हाथ हिलदे ने तो उसकी सत्या नाल जे मैं बोलदा हाँ तो उसकी सत्या नाल जे मैं देखता हाँ तो उसकी सत्या नाल जे तुसी सुनदे हो तो उसकी सत्या नाल तुम कंधे मुक्ति देन वाला पाप बंधना तो रहित कर देन वाला उदारे खुले दिल वाला अपारे जिसका पारावार ना पाया जा सके हरियं करियं सारी सृष्टि नूं करन वाला भी है हरियं हरन वाला भी है नाश भी करन वाला है नामे उहदा कोई विशेष नाम नहीं अकामे वो कामना तो रहित है भुजंग प्रयाद छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र जाने चतर चक्र जाने चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य हुण पातशाह कहिंदे ने चौं कुंटां विच उहदा हुक्म रूपी चक्र चल रहा है तथा उह सारे संसार दा करता है चतर चक्र हरता चौं कुंटां विच उह हरन वाला नाश करन वाला भी है चतर चक्र दान्य चौं कुंटां विच जीवां नूं दान दे रहा चतुर चक्र जान चौं कुंटां विच उह जीवां नूं जानदा है तथा जीवां दे अंदर दी गल जानदा है इन्हां दे मन विच की है सब जानदा इसे लिए उन्हूं घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाण चतुर चक्र वर्ती उह चौं कुंटां विच वर्त रहा है कोई ऐसी जगह नहीं जिथे नहीं है चतर चक्र भरती चौं कुंटां विच जीवां दी पालना कर रहा है उन्हां दा ढिड भर रहा है चतर चक्र पाले चौं कुंटां विच जिथे जिस जीव नूं पैदा कीता उन्हूं पालदा है चतर चक्र काले चौं कुंटां विच जीवां दा काल भी बणदा है चतर चक्र पासे सारे पासे सब दे नेड़े उह वसदा है चतुर चक्र वास्ते उहदा वासा किसे एक जगह नहीं बल्कि हर जगह ते उह मौजूद है चतुर चक्र मान्य चौं कुंटां विच उह माननीय है तथा सब उसका मान करदे ने चतुर चक्र दान्य उह चौं कुंटां विच जीवां नूं दान दिंदा है रोज तुसीं पढ़दे हो ऊड़े ऊड़ आवै सह कोसा तिस पाछै बचरे छरिया तिन कवन खिलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करे जिथे जिथे जिस जीव नूं पैदा कीता है उथे उथे उसकी पालना कर रहे हैं चाकरी छंद न क्षत्र न मित्र न भरम न मित्र न कर्म न काहे अजन्म अजाए न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र प्रदीश है प्रतीश है अदीश है अदृश्य है अकृत है ना उसका कोई शत्रु है ते ना ही उसका कोई मित्र है भाव उदे अंदर एक शत्र मित्र दी भावना ही नहीं है वो तो सारे अंदर है फिर ना भरमंग ना भित्र है ना उहदे अंदर कोई भरम है ना उहदे अंदर कोई दुचितापन है साडे विच कई दुचितापन हुंदा है करिए ना करिए जाइए ना जाइए
ऐसा उसके अंदर नहीं है। उन्हें जो करना है कर ही देना है, ना कर्मंग ना काय, ना वो कर्मा के अधीन है ते ना उसकी को काया साडे वर्गा शरीर है। अजन्मंग उन्हें किसी तो जन्म नहीं लिया, अजाए जाए मना उसनों किसी ने जाया नहीं। जिन्हें अस कहने फलाने का जाया है, ये फलाने का जन्म दिता है, पर परमात्मा अजन्मंग अजाए ना चित्र है, ना उसकी कोई तस्वीर बनाई जा सकती है, ना मित्र है, ना उसका कोई विशेष मित्र है, वो सब दा ही मित्र है। परे है पवित्र है, वो परे तो परे ते पवित्र है, पाक है, उसके विच किसी तरह का कोई ऐब नहीं, बेऐब है, प्रथित है, वो सारी पृथ्वी का ईस्ट मालक है, अधि पर इन्हां अखां नाल सानू नजर नहीं आता, अदृश्य है। अदृश्य का मतलब भी जिहड़ा दृष्टि गोचर नहीं होता, जिन्हों असी अखां नाल नहीं तक सकते, अकृष्ट है, जिन्हों कोई खिच नहीं पा सकता, वो किसी की खिच तो रहत है, वो स्वयंभू अपनी मौज विच विचरन वाला है। भगवती छंद तो प्रसाद कथते, ये छंद नाम है भगवती, और तब प्रसाद कथते आप जी की कृपा द्वारा कथन कर दे। क्या छिज देते क्या भिज देते, के आगंज कर में के आ भंज भर में, के आ भिज लोक के आ दित शोक, के आ भिज लोक के आ दित शोक, के अवधूत बरने के बेभूत करने, के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है, के अशोक बरने के सर्वा अभरने, के जगतंग गति है के छत्रंग छत्री है, के ब्रह्मंग स्वरूप के अनुभव अनुपै,

0: के सर्वंग कली हैं के सर्वंग दली हैं के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र दानी है। एक बारी फिर पढ़ो कि सर्वत्र मान्य कि सर्वत्र दानी है कि सर्वत्र गौने कि सर्वत्र भौने कि सर्वत्र देते कि सर्वत्र भेज दे कि सर्वत्र राजे कि सर्वत्र साजे कि सर्वत्र दीने कि सर्वत्र लीने कि सर्वत्र जाहो कि सर्वत्र भाहो कि सर्वत्र देते कि सर्वत्र भेते कि सर्वत्र काले कि सर्वत्र पाले कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र घंता कि सर्वत्र भेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काजे कि सर्वत्र राजे कि सर्वत्र सूखे कि सर्वत्र पोखे कि सर्वत्र त्राणे कि सर्वत्र प्राणे कि सर्वत्र देते कि सर्वत्र भेसे कि सर्वत्र मानिय सदैव प्रधानिय कि सर्वत्र जापिय कि सर्वत्र थापिय कि सर्वत्र भाने कि सर्वत्र माने कि सर्वत्र इंद्र कि सर्वत्र चंद्र कि सर्वं कली में कि परमं पही में कि आकल आला में कि साहिब कला में कि हुस्न वजू हैं तमाम रजू हैं हमें सुलसला में सलीकत मुदा में गनी मुर्श कष्ट गरीब परस्त है बिलंदुल मकान जमीन उल जमाने तमीजुल तमाम रजूअल निधाने हरीफुल अजीम रजायत यकीने अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अभंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनी मुल्क राज हैं निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रवाह है सुजुगत सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है तदा सर्व साज है समस्तुल सलाम है सदैव अकाम है निर्बाधित रूप है अगाध है अनूप है ओंगाध रूपे अनादत रूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गं त्रिबादे अगंजे अगादे शुभं सर्व भागे तो सर्वा अनुरागे त्रिभुगत रूप है अछिज है अछूत है के नरक प्रणास है पर प्रवास है निरुकत प्रवाह है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरुकत सदा है विभुगत प्रवाह है अनुकष्ट रूप है प्रजुगत अनूप है निरुकत सदा है विभुगत प्रवाह है अनुकष्ट रूप है प्रजुगत अनूप है। तो सत्संगत समा हो चुका है, छंद लंबेरा है और इस बीच बहुत सारे फारसी दे अखर ने जिन्हों जल्दी नाल समझाया नहीं जा सकता, इसलिए आज इसकी समाप्ति करते हैं। कल फिर गुरु कृपा दे नाल बड़े ठरमे अते प्यार नाल एक एक अखर नू समझन समझाउन दा यतन किया जाएगा। समूह देश विदेशों में बैठिया संगतां नू बेनती है कृपा करके अपने हाथ में गुटका साहब जरूर रखो, फिर पेंसिल रखो, कागज रखो, जिन्हों जेड़े अखर की ना समझ आवे वो फिर तुसी फोन से क्लीयर कर सकते हो, पर मैं इनू जल्दी नाल करन दे हक विच नहीं क्योंकि ऐसा उपराला शायद मेरी जिंदगी विच पहला है। तुसी शायद इस तो पहला कदे किसी क्लास विच पढ़िया होवे तो मैं नहीं जानता। तो आपने इस कार्ज नू सदीवी बनाना है ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਦਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ।
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening to Seek Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

0: केरबोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह वी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Speak Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3875.

अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुरपुरा पायो बड भागी लिव लागी मेदन भर सहता पै भंजन पर पीर निवारन कल सहार तोहे जस बक्ता कुल सोडी गुरु रामदास तन धर्म तुजा अर्जन हर भगता त्रम धीर गुरमत गंभीर पर दुख बसारन शब्द सार हर सम उधार अहमेव निवारन महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटे सतवंत हर नाम मंत्र नव निद नान खुटे गुर रामदास तन सर्ब मैं सहज चंदुआ ताणियो गुर अर्जन कल उचरै तै राज जोग रस जानियो पै निरपहु माणियो लाख मह अलख लखायो अगम अगोचर गत गंभीर सतगुर परचायो गुर परचै परवान राज मह जोग कमायो तन तन गुर तन अपार सार सुपार परायो गुर गम प्रमाण अजर जरियो सर संतोख समायो गुर अर्जन कल उचरै तै सहज जोग निज पायो अमेउ रसना बदन बरदात अलख अपार गुर सूर शब्द हौ मैं निवारियो पंचाहर निदलियो सुन सहज निज घर सहारियो।

गुरे अर्जन पुरख प्रमाण पार्थव चालै नाही नेजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारियो भव जल सायर सेत नाम हरि का बोहिथा तो सतगुर संग हेत नाम लाग जग उदरियो जगत उदाहरण नाम सतगुर तुठै पायो अब नाही अवर सर काम बार अंतर पूरी पड़ी ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यो तत मलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमर दास अमृत छतर गुर राम है दियो गुर राम दास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो और आद पुरख प्रतख लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगत ज्योत जग मगै तेज भू मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो भन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन मुख रहो कल युग जहाज अर्जन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेत।

सड़ सोहिया किव करी निवन ना जाए थनी गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए तौल हरी से पी टहंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैन अपार पहला वस्त सियाण।

नानक गुरमुख छुट्टी है हर प्रीतम स्यों संग बाग मरे मन मारी है जिस सतगुरु दीखे।

एका नदर निहाल नानक गुरमुख उबरे गुर सरवर सच्ची पाल अग्न मरे जल लोड़ लहो विण गुर निद जल नाही जन्म मरे परमाई है जे लख कर्म कमाहे जम जागात ना लगई जे चले सतगुर पाए नानक निर्मल अमर पद।

अवगुणी किंज भरी गंदी आए सरवर हंस ना जानिया काग कुपंखी संग साकत स्यों ऐसी प्रीत है बूझो हो ज्ञानी रंग।

नानक ते नर असल खार जे बिन गुण गर्भ करंत सो ब्राह्मण जो बिंदै ब्रह्म जप तप संयम कमावै कर्म शील संतोख का रखै धर्म बंधन तोड़ै होवै मुकत सोई ब्राह्मण पूजन जुगत खत्री सो जो कर्मा का सूर पुन दान का करै शरीर खेत पछाणै

गुर कृपा ते मन वसे कर्म प्राप्त होए नानक हो हो करते खप मोए खूहन लख असंख

होए ज्ञान खड़ग पंच दूत संघारे गुरमत जागै सोए नाम रतन परगासिया मन तन निर्मल होए नाम हीन नकटे फिर है बिन नावै बहरोए नानक जो तुर करतै लिखिया सो मेट ना सकै कोय गुरमुखा हर धन खटिया गुर कै शब्द विचार नाम पदार्थ पाया अतुट भरे भंडार हर गुण बाणी उच्चर है अंत ना पारावार नानक सब कारण करता करै वेखै सिर जनहार गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश किथे ऊंग ना भुख है हर अमृत नाम सुख वास नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम परगास काम क्रोध का चोलड़ा सब गल आए पाए एक उपज है एक बिनस जाहि हुक्मे आवे जाए जम्मन मरन ना चुकई रंग लगा दूजे पाए बंधन बंद पवाईयन

ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं, गुर बचन ना करह विसास। ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है, नित हर लिव सदा विगास। हर ज्ञानिया की रखदा हौ सद बलिहारी तास। गुरमुख जो हर सेम दे, जन नानक ताका दास। माया पोयंगम सर्प है, जग घेरिया बिख माए। बिख का मारन हर नाम है, गुर गरुड़ शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखिया, तिन सतगुर मिलिया आए। मिल सतगुर निर

आए। हर हर नाम ना कीर्तनी करते आप खुआए। हर गुरमुख कृपा धारियन जन विछुड़े आप मलाए। जन नानक तिस बलिहार।

नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद सतगुर सेवन अपना गुर शब्दी विचार सतगुर का पाणा मन लैन हर नाम रखे और तार एथे उथे मनियन हर नाम लगे वापार गुरमुख शब्द संझाप दे तित साचे दरबार सच्चा सौदा खर्च सच

किसी आगे करी पुकार, वडभागी सतगुर पाया बुझिया ब्रह्म विचार। तिसना अग्न सब बुझ गई, जन नानक हर पुर तार। असी खते बहुत कमाव दे अंत न पारा वार, हर कृपा करके

बिन शब्द मुक्त ना होई, भेख करह बहु कर्म बगुत्ते, पाए दूजे परज विगोई, नानक बिन सतगुर नाहो ना पाईऐ, जे सो लोचै कोई, हर का नाहो अत वड ऊचा, ऊची हूं ऊचा होई, अपण कोई ना सकई, जे सो लोचै कोई, मुख संयम हछा ना होवे, कर भेख भवै सब कोई, गुर की पौड़ी जाहे चढ़ै, कर्म प्राप्त होई, अंतर आए वस्तै, गुर शब्द विचारै कोई, नानक शब्द मरै मन मानिए, साचे साची सोई, माया मोह दुख सागर है, बिख दुतर तरै

जो तुर लिखिया सो कमावना करना कछु ना जाए गुरमति ज्ञान रतन मन वसै सब देखिया ब्रह्म सुपाए नानक सतगुर बोहित है वडभागी चढ़ै ते भवजन पार लंघाए बिन सतगुर दा

तिस ना बुझै तिपत होए हर कै नाए प्यार। नानक गुरमुख पाईऐ हर अपनी कृपा धार। बिन शब्द जगत बरलिया कहना कछु ना जाए। हर रखे से उबरे शब्द रहे लिवलाए। नानक करता सब किस जानदा जिन रखी बणत बनाए। होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थक।

आय सतसंगत हर मेल प्रभ हर नाम बसै मन आय जन्म मरण की मल उत्तर जन नानक हर गुण गाय तुर हर प्रभ।

दे हर जग जीवन उर तार नानक गुरमुख सोहणे तित सच्चै दरबार हर मंदर हर साजिया हर वस्तै जिस नाल गुरमति हर पाया माया मोह पर जाल हर मंदर वस्त अनेक है नव निद नाम संभाल धन भगवंती नानका जिन्ना गुरमुख लद्दा हर पाल वडभागी गढ़ मंदर खोजिया हर हिरदै पाया नाल मनमुख दह दिस फिर रहे अत तिसना लोभ विकार माया मोह ना चुकई मर जमह वारो वार सतगुर सेव सुख पाया अत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द बीचार हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावह मान किल विख पाप सब

बोलिया तेरा थाई पवे गुरमुख हुए अलाई शब्द चीन तिख उतरे मन लहर जाई चारे कुंडा चोक वरसदा बूंद पवे सहज सुपाई जल ही ते सब उपजे बिन जल प्यास ना जाई नानक हर जल जिन पिया तिस भूख ना लागे आई बाबी हा तू सहज बोल सच्चे शब्द सुपाई।

ये तन मन सुख होए जां तत बूंद मोहे पाए अन धन बहुता उपजै धरती शोभा पाए अन दिन लोक भगत करे गुर कै शब्द समाए आपे सच्चा बख्श लए कर कृपा करै रजाए हर गुण गाव हुकामणी सच्चै शब्द समाए पै का सहज श्रृंगार करहु सच रहो निवलाय नानक नामो मन वसै हर दरगाह लए छडाय बबीहा सगली धरती जे फिरह ऊड चढ़ह आकाश सतगुर मिलै जल पाईऐ चूकै भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किस तिसकै पास बिन बोलिया सब किस जानदा किस आगै कीचै अरदास नानक घट घट एको वरतदा शब्द करी परगास नानक तिसै बसंत है जे सतगुर सेव समाए हर बुठा मन तन सब परफड़ै सब जग हरियावल होए शब्दे सदा।

हर उठे मन तन पर फड़े सब जग हरिया होई बडड़े चार चलंबले नामड़ा लइए किस नाव लइए परमेश्वर पन्नन कड़न समरथ हर हट पी तू तू कर है बुल है भली बाण साहिब सदा हदूर है क्या उच्ची करह पुकार जिन जगत अपाए हर रंग।

पाया कर कर थके विचार नगर करह जे अपनी ताय आपे लह सवार नानक गुरमुख जिन

नानक साचा भेट हर मन वसै पावहै मूख द्वार नानक हुक्म वरतै खसम का मत पवी फिर है चल चित मन मुख सहु कर दोस्ती सुख के पुछह मित गुरमुख सहु कर दोस्ती सतगुर सहु लाई चित जमन मरण का मूल कटी ता सुख होवी मित भुलिया आप समझाए।

आस्था दीवार जो गुरु नानक देव जी महाराज जी अजीम रचना है, महान रचना है, उस आस्था दीवार की तीसरी पौड़ी की विचार जिसका पावन पवित्र श्लोक है, कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत भाव सुख साया, कुदरत कला कुदरत ईश्वर की लीला, कुदरत ईश्वर की हिकमत, कुदरत ईश्वर की बनावट, ईश्वर की साजी हुई ये प्रकृति ये संसार सब कुछ दे उसकी कला वरत रही है, ऐसा आम संता में दिखाई देता। कुदरत दिसे अखां विच जो कुछ दिखाई देता है, अखां विच जिहड़ी ये दृश्य है ये उसकी कला उसकी कुदरत है। छोटी दिया ये दो अखां पहाड़ भी वेख लेंदियां, आसमान भी वेख लेंदियां, सागर भी वेख लेंदियां, चारों पासे निगाह मारिए तो छोटी दिया अखां बहुत कुछ देख रही। देखना एक महान कला है, तो ये कला उस महान कलाकार अकाल पुरख की देन है। अहमियत का तो उदों पता चलता है जब किसी को कला वो कलाकार खो लेंदा है, जब किसी के नेत्रों में ये जोत नहीं रहती फिर पता चलता है कि उस कादर की एक कितनी वड्डी कुदरत है जिस तो मैं वांझा रह गया। तो साहब कहते हैं कुदरत दिसे अखां दे दृष्ट शक्ति जड़ी है ये उसकी कला है, कि अखां दे राही जो कुछ दिखाई दे रहा है सब उसकी कुदरत है। कुदरत दिसे कुदरत सुनिए इन्हां कन्नां दे जो कुछ सुनाई दे रहा है ये उसकी कला ये उसकी देन ये उसकी बख्शिश। दरअसल धर्म भी एक कला है, और जब भी कोई मनुख पूर्ण तौर से धार्मिक हो जाता है वह कलाकार ही हो जाता है। ईश्वर भी कलाकार है, ऐसा जीवंत कलाकार है जो अपनी कला दे नाल जुड़िया है। जिथे जिथे भी एक कला बिखरी हुई है उस दे वो कलाकार बैठा है। तो साहब कहने कन्न जो कुछ सुनते हैं ये भी एक कला है, ये भी एक कुदरत है, और इस कुदरत दे वो आप है भाव शक्ति, वो आप है कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत भाव सुख सा। ये भी कुछ दी कला है कि जीवन के अंदर जो भय है ते भय सुख दा सार है। इत्थे तर्क खड़ी हो सकती है भय भय में एक मानसिक रोग आख्या गया, भय मनुख दा विकास रोक देंदा चाहे वो कैसा भी भय हो गया। पर सतगुरु देव जी महाराज इत्थे जिस भय का जिक्र कर रहे ने वो निर्मल भय है। जैसे कोई ये भय रखे कि मैं अधिक खावांगा तो बीमार हो जावांगा, भूख तो ज्यादा खावांगा तो बीमार हो जावांगा, बीमारी का ये भय खाण पीने के संजम में जन्म देता है, ये भय पवित्र भय है। जैसे कि मैं किसी भी थान पर प्रकृति के नियम की उलंघना करांगा उसके नियम नु तोड़ांगा इस दे नाल मैनू दुख होगा कलेश होगा। ये जिहड़ा भय है ये मनुख नु परहेजगार बना देता है, और कानून दे नियम कानून की अपनी नियमावली कि इसका भय है मनुख नु ऐसा सोचने ते मजबूर कर दे कि मैं कानून नहीं तोड़ना नियम नु नहीं तोड़ना। अगर मनुख दे अंदर ये भय ना होवे तो ना कानून रह सकदा है, ना प्राकृतिक नियम रह सकदे मनुख दी दुनिया विच, ना ही धर्म कर्म ये सब कुछ दियां तहियां उड़ियां। दरअसल मनुख दा ये भय है कि भय परमात्मा नूं मनन ते मजबूर कर देंदा है, और भय कानून दी हिफाजत करन ते मनुख नूं मजबूर कर देंदा है, समाज दे नियम दा भी उधार नहीं हो जांदा। परमात्मा आप निर्मल है पावन है पवित्र है, इस वास्ते उसका भय भी पवित्र है। परमात्मा का भय मनुख नूं निर्मल कर देंदा है पावन कर देंदा है। साहिब कहिंदे निर्भव जपे सगल भव मिटे, परमात्मा का भय दुनियावी भय मिटा देंदा है, निर्मल भव पाया
हर गुण गाया हर वेखे राम हदूरे। जिस दिन का निर्मल भय प्राप्त होया उस परमात्मा का हुण हर थां राम हाजिर नाजर दिखाई दे रहा है। तो साहिब कहिंदे ने जीवां दे अंदर ये जिहड़ा भय है ये सुख का सार है, ये जीवां नूं संजमी बनांदा है, ये मनुख नूं बकायदा मर्यादा विच रखदा है। और भय ही नहीं तो फिर मर्यादा की है, नियम की है, ये कुछ भी नहीं। तो सतगुरु देव जी महाराज कहिंदे ने ये भय भी एक तेरी कला है, ये भी एक तेरी महान कुदरत है। कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत भव सुख सास, कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकार। ये आकाश तेरी कुदरत, ये पाताल तेरी कुदरत, और आकाश ते पाताल दे विचकार ये जितना आकार ये तेरी कुदरत, ये तेरी कला। वेखदे असीं पया ना कला दिखाई देंदी है ते ना कलाकार दा बोध हुंदा है। भगत उसनू कहिंदे ने जो कला ते कलाकार दे नेड़े है, संसारी उसनू कहिंदे ने जो कला ते कलाकार तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। जो दूरियां दे जी रहे है वो दुख दे जी रहे है, जो नेड़े होके जी रहे है वो सुख दे जी रहे है, जो दूर होके जी रहे है वो अंधकार दे जी रहे है, जो नेड़े होके जी रहे है वो प्रकाश दे जी रहे है, जो दूर होके जी रहे है वो अग दे जी रहे है, और जो नेड़े होके जी रहे है वो तो अमृत दे जी रहे है, आनंद दे जी रहे है, जो दूर होके जी रहे है मानो दोजक दे जी रहे है, नरक दे जी रहे है, और जो नेड़े होके जी रहे है बस ओही स्वर्ग दे च है, ओही सचखंड दे च है। इस जगत दे च कुछ जीव नेड़े होके जी रहे ने, कुछ जीव दूर होके जी रहे ने। आम सियाणे दा ऐसा कहना है कि विज्ञान मुलक नूं मुलक दे नेड़े लियाया है, प्रांत नूं प्रांत दे नेड़े लियाया है। विज्ञान ने दुनिया बड़ी छोटी कर दी है, दुनिया नूं बहुत नेड़े लियांदा है विज्ञान ने। ये विज्ञान की बहुत वड्डी सेवा है, ये साइंस की बहुत वड्डी सेवा है। अज दुनिया बहुत छोटी है, सवेरे मनुख नाश्ता एक मुलक विच करदा है, दोपहर का भोज दूसरे मुलक विच करदा है, और रात का खाना तीसरे मुलक विच खा खांदा है। अज साइंस ने दुनिया इतनी नेड़े कर दी है, मुलक इतने नेड़े हो गए ने, प्रांत नेड़े हो गए ने, बाहर दियां दूरियां नूं मिटाया है साइंस ने, अंदर दी दूरी नूं मिटाया है धर्म ने, दिलां नूं नेड़े कीता है संत जन ने। दिल दिल दे नेड़े आवे ये भगतां ने ऐसा उद्यम किया, ये गुरु जना ने ऐसा परिश्रम किया है कि मनुख दा दिल नेड़े आवे, बंदा बंदे दे नेड़े आवे, मुलक मुलक दे नेड़े आवे, प्रांत प्रांत दे नेड़े आवे, बाहर दियां इन्हां सारियां दूरियां नूं मिटा दिता। अज हर बंदे नूं पता है कि फलाना मुलक की है ते फलाना मुलक की है, उत्थों दे बाशिंदे कैसे ने, उत्थों दी भाषा कैसी है, ये सारियां दूरियां विज्ञान ने खत्म कर दित्तियां ने। पर यह बहुत वड्डी सेवा है, अपनी थां ते किस हद तक ये साइंस काबिले दाद है। बहुत सारे सुख बैरूनी साइंस ने दिते ने और इनकार नहीं किया जा सकता। साइंस ने पैरां दी गति नूं वधाया, हजारां मील दी वाट थोड़े घंटिया दे अज तय हो जाती है। मनुख की आवाज नूं शक्ति दित्ती है साइंस ने कि बोलदा मनुख एक मुलक विच पिया है सुनिया जा रहा है दूसरे मुलक दे। और इसे तरीके दे नाल मनुख की दृष्ट शक्ति नूं भी साइंस ने वधाया, खुरदबीन दे राही दूरबीन दे राही दूर दी चीज और बारीक दी चीज मनुख वेख लैंदा है। तो इस तरीके नाल बाहर दियां तमाम दूरियां नूं साइंस ने दूर किया है। अगर बाहरों दूरी मिट जाए तो दिल दूर रहे, मनुख का हिरदा मनुख के हिरदे तो दूर रहा तो यह दूरी भी नरक नूं जन्म देंदी है जीवां दे विचकार। कई दफा ऐसा देखते हैं मनुख कोल बैठा है तो अगला पूछ बैठता है भी ये जिहड़ा कोल बैठा है ये कौन है, तो व्यक्ति कह उठता है कोई दूर का जापता है। तो दूरी तो एक फुट भी नहीं है, कोल बैठा है। एक ऐसे पुरुष का नाम लिया गया जो गालबन किधरे दूसरे मुल्क 5000 मील की दूरी पर रह रहा है, तो जैसे उसका नाम लिया गया एकदम बोल उठा है वो तो साडा नेड़े दा है। 5000 मील की दूरी पर रहन वाला नेड़े दा है, कोल बैठा होया दूर दा है। दरअसल दिल की सांझ नहीं,
ਦਿਲ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਚੁਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੂਰੀ ਮਜ਼ਹਬ ਕਰਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਰੰਗ ਕਰਕੇ, ਰੂਪ ਕਰਕੇ, ਨਸਲ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ, ਮਰਾਠੀ, ਬੰਗਲਾ, ਬ੍ਰਿਜ ਵਰਸ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਵਰਸ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੂੰਡੇ 'ਤੇ ਰਬਾਬ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਜਸ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਾ ਚਲੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਕੋਈ ਬਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਦਵੀ ਬਣ ਗਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਆਖੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਜੋ ਹੋ ਗਏ, ਭਰਾ ਜੋ ਹੋ ਗਏ, ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਰਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੇੜਤਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਸੰਤ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉੱਦਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਸੰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਤ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਅਸੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰੀ। ਤੋ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ, ਧਰਮ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਧਰਮ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਭੇਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਰਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਕੌਣ ਅਮੈਰੀਕਨ, ਕੌਣ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਸਭ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ,
और अंदर दे हिरदे संत जना ने नेड़े लेंदे। अगर जगत विच अज दूरियां मिलदियां ने तो सह सकते, एक प्रांत दा दूजे प्रांत नाल मिलना कठिन हो रहा है, एक मुलक दा दूजे मुलक नाल मिलना कठिन हो रहा है। जिथे भरावां दी तरह सारी पृथ्वी ते आमदो रफ्त सी, अज हर मुलक दे सियासतदान ने रोकां खड़ियां कर दित्तियां। ये आ सकते ने, ये नहीं आ सकते। तो जिहड़ा देश जितना ज्यादा संपन्न हो जाता है वह गरीबां लई दरवाजे बंद कर देता है, जिहड़ा देश जितना ज्यादा उन्नत हो जाता है वह पछड़े होने लई अपने दरवाजे बंद कर देता है। किधरे ये भी ना उन्नत हो जाए, किधरे ये भी ना महान हो जाए, ये धर्म की सोचनी नहीं, ये साइंस की सोचनी नहीं, ये राजनीति की सोचनी, ये सियासत की सोचनी है। तो जितनिया ये दूरिया ने जगत विच ये राजनीति करके, तो जिस दिन पूर्ण तौर पर दुनिया स्वस्थ होगी, धार्मिक होगी, उस दिन राजनीति विदा हो जाएगी, इसकी लोड़ ही नहीं रहेगी। ये शायद इस वास्ते है कि दुनिया पूर्ण तौर पर धार्मिक नहीं है, दुनिया पूर्ण तौर पर संत नहीं है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बहुत नेड़े होके कुदरत नु वेख रहे हैं, उस कलाकार नु वेख रहे हैं, और जब कुदरत

0: खास धरती दी ए खास ते धरती दुते ए बल रही बैसंतर सूरज बेच प्रगट हो रही ए रोशनी और ए पाउन ते पानी हे प्रभु सब तेरी कला तेरी बनावट। जैसे कोई मुसव्वर चित्र बनांदा है तो चित्र उस कलाकार दी कला है, चारों पासे जो व्यापक दिखाई दे रहे हैं सतगुरु कहंदे ने उस महान कलाकार दी एक कला है। सब तेरी कुदरत, सब तेरी ही ये कला है, सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाही पार। सारी कुदरत दा तू करता है, तू कादर है, तू मालिक है, पाकी नाही पाक तेरी वड़ियाई पाक है, पवित्र है, शुद्ध है, मलन नहीं तेरी कृत पाक है, तू करता पाक है, इस वास्ते तेरी महिमा भी पाक है। नानक हुक्मे अंदर वेखे वरते तासो ताक, तू सारे जीवां विच एक सार होके वरत रहे हैं, ते सारे दे अंदर बैठ के तू सब नू वेख रहे हैं, सब नू जो है जान रहे हैं। इन्हां दो श्लोकां दे नाल जो पावन पौड़ी है वो ये है, आती ने भोग भोग के कोई भस्मण भौर चढ़ाया। उस जीव ने, उस प्रभु दी अंश ने आप ही शरीर विच रह के तरह तरह के भोग भोगे, तरह तरह के रस लै के अंत नू जीव एक पासे होया, भौर एक पासे होया, देही भस्म हो गया, भौरा अगां उड़ गया। वड्डा होआ दुनीदार गल संगल घट चलाया, बड़ा वड्डा सी दुनिया विच, बड़ी महिमा सी, बड़ी वड़ियाई सी, बड़ी शानो शौकत सी, पर जैसे भौरा इस तन तो एक पासे होया, संसार दी सारी मान मर्यादा एक पासे रह गई। दरअसल जिस ढंग नाल संसार विच मान मर्यादा प्राप्त करी दी है, निरंकार दी दुनिया विच मान मर्यादा प्राप्त करन दा ढंग हो रहा है। संसार विच झूठे नूं भी मान मर्यादा मिल सकती है, जबकि निरंकार दी दुनिया विच नहीं। संसार विच धनवान नूं भी मान मर्यादा मिल सकती है, जबकि परमात्मा दी दुनिया विच नहीं। संसार विच सत्ताधारी नूं भी मान मर्यादा मिलदी और मिल सकती है, जबकि परमात्मा दी दुनिया विच नहीं। परमात्मा दी दुनिया ते केवल सत्वादी नूं ही मान मर्यादा मिलदी है, प्रभु चिंतन करन वाले नूं ही मान मर्यादा मिलदी है, बाकी सारी मान मर्यादा इत्थे रह जांदी है। तो साहिब कहिंदे बहुत वड्डा दुनियादार सी, बड़ी मान मर्यादा सी, होया कि जितने औगण इसने कीते वो औगण ही इसलिए गलां दे संगल बन गए, और अंतिम समय प्रभु दी बनाई हुई मर्यादा अनुसार जमजू अगला अगे जन्मां दीआं फाइयां इहदे गल विच औगणां दे संगल पा के इहनूं खिच के लै गईआं। भाव पतित संस्कार अगले जन्म विच लै गए, मलीन संस्कार अगले जन्म विच लै गए, ये मलीन संस्कार ही गले दा संगल ने। अगे करनी कीरत वाचिए बै लेखा कर सुनाया, अगे धर्मराज ने उसकी जो कृत सी, जो उसकी करनी सी, वो पढ़ के सुना दिती, समझा दिती, ये तेरी कृत है, ये तेरा करना है। अंतम समय जो कुछ भी जीवन भर कीता होंदा है सामने आ जाता है, ये प्रभु का बनाया एक धर्म है, धर्म का राज है, सब कुछ मनुख दे सामने आ जाता है, तो सब कुछ मनुख पढ़ लैंदा है, तो सब कुछ दी बंदे नूं सूझ ते समझ पै जांदी है। थां ना हो वी पौंदी हुण सुणीए क्या रुआया, ऐसा दुनियादार जो पतित संस्कार लेके अगे चला गया है उन्हों मार पैंदिआं नूं थां नहीं मिलदी, दुख ते दुख, कलेश ते कलेश, ते हुण रोंदा है, हुण पिटदा है, दुख है, कलेश है, पर हुण कौण सुणे इस रुदन नूं, कौण सुणे? जद तू रब दी गल नहीं सुनी तो हुण तेरे रोने नूं कौण सुणे, तू संत जना दे बचन नहीं सुने तो हुण तेरे रोने नूं कौण सुणे, तू सच दे गीत नहीं सुने ते हुण तेरे इस रुदन नूं कौण सुणे। तो सतगुरुदेव जी महाराज इत्थे कहिंदे ने इस ढंग दा उसका अंत हुंदा है, मन अंधे जन्म गवाया, ऐसा पुरुष मन दा अंधा है, ते मन दे अंधे करके कीमती जन्म गवा बैठदा है, सारा जन्म ठोकरां च बतीत होया, सारा जीवन ठोकरां च बतीत होया, परम धाम दी प्राप्ति ना हो सकी।
1: किरबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णो सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साढ़े स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha at Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.
4: Sampa Sampa Sarvatar Ramanam

नाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग असमन पहला गुर प्रसाद असमन पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी मल्ले पहले के लिखे टूडे असराजे की धुनी श्लोक महला पहला

हम प्रेम हर प्रेम कसाई दिन सरात वाहिगुरु हम प्रेम कसाई दिन सरात हर रत्ती हर रंग चोले हर रत्ती हर रंग चोले।

मुख मुगद अशुद्ध मन होते हम मूरख मुगद अशुद्ध मन हो हम मूरख मुगद अशुद्ध गुरु सदगुरु के बच

हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत सार दिशा दिपाही माया मोह परम पैपुले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहि मिलंत जम त्रास मटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सिरनाई। सुखहु टल गुर सेवी है अहन सुसहज सुपाई। दर्शन परसे आए गुरु कै

संबंधी नूर अरसों पुरुषों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह ਸਿਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਆਏ

एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर सिमरंत संत सर्वत्र रमणं नानक अगनाशन जगदीश्वर आद पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर सिमरंत संत सर्वत्र रमणं नानक अगनाशन जगदीश्वर देखन सुनन सुनावन मन महेंद्रिया साच पूर रहयो सर्वतर मैं नानक हर रंग राच पौड़ी हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई किन मह थापो थाप दास तैस बैन नहीं कोई खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी ओम जप जी साहिब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न हो गई जे सोची लख वार चुपै चुप न हो गई जे लाए राम लिवतार भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सहस सियाण पलक होए ताइक न चलै नाल किव सुचियारा होई है किव पूरा टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहे अजाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै बड़ियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई नानक हुक्म है जे पुजै तहुम मैं कह ना कोई गावै को ताण होवै कसतान गावै को दात जाने निशान गावै को गुण बढ़ियाइया चार गावै को विद्या विकम विचार गावै को साज करे तन खे गावै को जी लै फिर दे गावै को जपै दिसै दूर गावै को विखै हादरा दूर कथना कथी न आवै टूट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाही जुगां जुगंतर काही खाही हुक्मी हुक्म चलाई राह नानक विकसै विप्रवाह साचा साहिब साच नाए पाख्या पाव पार आखे मंगे दे दात परिदातार
ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੋਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਏ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹੇ ਅਸਮਾਈ ਗੁਰੀਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹੋਂ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਤਰ ਨਾ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਇ ਕਰੀ ਜੇ ਤੀਸਰ ਠੋਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸੋਣੀ ਹੋਵੇ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ।

कपूत संतोष प्रख्य जन सूत जे को बुज हो सच आरु तबले ऊपर के तपारु धरती ओर पर हुर हुर तिस्ते पार तले कवण जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुढ़ी कलाम ए लिखा लिख जाने को ए लिखा लिखिया किता वही किता तारण सवाल रूप गेती दात जाने कौन भूत गीता पसाओ इको पवाओ दिसते हुए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचारू वारे न जावा एक बार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंग पाओ संघ पूजा संघ तपताओ संघ ग्रंथ मुख वेद पाठ संघ जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचारू संघ

ज्ञान खंड में ज्ञान पर चांडो जिथे नाद विनोद गोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप जिथे काढ़ कड़ी है बहुत अनूप तांकिया गल्ला कथिया न जाए जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध जिथे घड़ी है सुरस दंक शुद्ध गर्म खंड की बाणी जोर जिथे और न कोई होर तिथै जूद महाबल सूर दिन में राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता मैं मा माए दाके रूप ना कथने जाए ना वह मरहे न ठगे जाहि जिनका राम बसै मन माए तिथै भगत बसै के लोह करे आनंद सचा मन सोए सच खंड बसै निरंकार कर कर विखे नजर निहाल तिथै खंड मंडल बर पांडव जे को कथै दांत नयांत तिथै लो लो आकार जिव जे हुकम दिव दिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत बहारा आदि जिसन आर अहरण मत विद तियार बौखला गंधव ताऊ पांडा पाव अमृत तटाल घड़ी आए शब्द सची जगसाल जिनको नजर कर्म तनकार नानक नजरी नजर निहाल सुलोक पवन गुरु पाणी पिता माता दर्द महत दिव सराध दाई दाया खिल सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाच धर्म दूर करमी आपो अपनी के निड़ के दूर जिनी नाम ते आया गई मशकत काल नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मशकत काल नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ जाप साहिब एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं शबै छंद दव प्रसाद चकर चेह नर वरन ज्या अर पात नहन देह रूप रंग अर देख पे कऊ कह न सकत कहे अचल मूर्तन भव प्रकाश मितो कह जाए कोठ इंद्र इंद्राण सह शहान गण जाए त्रिपवन महीप सुर नार्य सुर नेत नेत बण तृण कहत तब सर्वनाम कथय कवण कर्म नाम वर्णत समत भुजंग प्रयात छंद नमस्तंग अकाली नमस्तंग कृपाली नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाई नमस्तंग अजाई नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अधर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अथामंग नमस्तंग जीते नमस्तंग पीते नमस्तंग बाहि नमस्तंग टाहि नमस्तंग नीले नमस्तंग नादे नमस्तंग शेदे नमस्तंग गादे नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग पारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेकाय नमस्तंग भूते नमस्तंग जूपे नमस्तंग निरकर्मे नमस्तंग निर्भरमे

कली आएंगे, सर्वंगली आएंगे, सर्वतर माने आएंगे, सर्वतर दाने आएंगे, सर्वतर गौने आएंगे, सर्वतर पावने के सर्वतर देशा है, के सर्वतर पेशा है, के सर्वतर राज्य है, के सर्वतर साज है, के सर्वतर दीना है, के सर्वतर लीना है, के सर्वतर जाहो, के सर्वतर पाहो, के सर्वतर देशा है, के सर्वतर पेशा है, के सर्वतर काल है, के सर्वतर पाल है, के सर्वतर हंता, के सर्वतर गंता, के सर्वतर पेखी, के सर्वतर पेखी, के सर्वतर काज है, के सर्वतर राज है, के सर्वतर सुख है, के सर्वतर भुख है, के सर्वतर त्राण है, के सर्वतर प्राण है, के सर्वतर देशा है, के सर्वतर पेशा है, के सर्वतर राज है,

सर्वत्र भान है, के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वं कलिम है, के परमं भीम है, के अगलोलाम है, के साहेब कलाम है, के हुसनल वजू है, तमाम रजू है, हमेशा सलाम है, श्री कदम राम है, गरीब करता है, गरीब बरासता है, बलंदर मकान है, जमीन जमान है, तमीज तमाम है, रुजू नजान है, हरि फल जी मैरिया गजगी नानी कल तरंग पेदा पांग है, अजी जल नवाज है, गनीमल खराज है, रौक्त स्वरूप त्रमौत भूत है, पर भक्त प्रवाह है, सजौत सदा है, सदैव स्वरूप बेदी अनूप है, समाज तो ब्राज है, सदा सर्वसाज है, समाज तो सलाम है, सदैव काम है, निर्बाध स्वरूप है, गाध अनूप है, अंगाध रूप है, नाद स्वरूप है, अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रकामे, त्रिवर्गं त्रिवादे अगंजे अगाधे, सुवं सर्वभाग्य सुसर्वानुरागे, त्रिभुक्त स्वरूप स जय सुदय, के नरकं प्रणाशय, मृत्युल प्रवासय, नरोक्त सदा है, विभक्त प्रवाह है, अनुक्त स्वरूप है, प्रजोत अनूप है, चाचरी शंभ अपांग है, अनांग है, पेघा लेख है, परम कर्म है, नाद जगाद है, अजय है, वह भूत है, तूत है, नास है, उदास है, दंत है, बंध है, अपागत है, विरागत है, अनास है, प्रकाश है, नचंत है, सुनंत है, लेख देख लेख बेख गाय गाय, सांभ गम है, नीला नाद है, नेत सुनेत जात जात है, चरपट छंद दव प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हरता, सर्वं करता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं जुगता, सर्वं मुक्ता, रसावल छंद दव प्रसाद, नमो नरक नाशे सदा भंग प्रकाशे, अनंगंग स्वरूपे भंगंग भूते, प्रमादंग प्रमाते सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते, अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे, निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे, न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न दाता न माता न जाता न भक्त, नरसागुं श्री गम दौमी गाय, सदागुं प्रवाह जय अजय, भगवती छंद दव प्रसाद, के जा हरजूर है, के हाजर हजूर है, हमेशा सलाम है, समाज तुलकलाम है, के साहब दमाग है, के उस नल जराग है, के कामल करीम है, के राज करीम है, के रोजी रहा है, के राज रहा है, करीमल कमाल है, के उस नल जमाल है, गनीमल खराज है, गरीबल निवाज है, हरीफुल सिकान है, रासल पकान है, कलंकंग प्रणास है, समाज तुल निवास है, अगंजल करीम है, रजाय करीम है, समाज तुल जवाह है, के साहब गिरा है, के नरकंग प्रणास है, प्रतिफुल प्रवास है, के नरकं प्रणास है, बैस्तुल निवास है, के सर्वल गुबान है, मे सुलर बन है, तमामल तमीज है, समाज तल अजीज है, पारंग परमीश है, समाज तल अधीस है, अधीसल अलेख है, मे सुल अभेख है, जमीन उल जमा है, मे कुल माह है, त्रिमल कमाल है, जल जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, के मित्व सुभाष है, के अजब स्वरूप है, के मित्व भूत है, के मित्व बसा है, के आत्म प्रभा है, के अचलंग नांग है, के मित्व अपांग है, मद पार छंद दव प्रसाद, मुन मन प्रणाम गुण गण मदाम, हर भर अगंज हर नर पर पांज, गण गण प्रणाम मुन मन सलाम, हर नर अखंड भर नर अमांड, गण पवनाशु मुन मन प्रकाश, गुण गण प्रणाम जल थल मदाम, अंश जे अंग आसन अपांग, उपमा पारगात्मित उदार, जल थल अमांड दिस विस अपांड, जल थल महंत दिस विस बेअंत, गण पवनाश त्रैत तर दराश, आजन बाह कैसदा ओंकार आदि कथनी अनाद, खलखंड ख्याल गुरबर काल, कर कर प्रणाम ज जरण नाम, अंश जगात अज जन बात, अन चंज गात अंधरंज बात, आन टुट भंडार आन ठट अपार, आठ धर्म अत टीठ कर्म, अन प्रण अनंत दाता महंत, हर बोल मना छंद दव प्रसाद, करुणालया है, अर्गालया है, खलखंडन है, मैं मंडन है, जगदीश्वर

कल कारण है सर्व वारण है दृत के धरण है जग के कारण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्या है सर्व नास्या है करुणा कर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगदेश्वर है ब्रह्मांड है कलकांड है भरते पर है करुणा कर है जपा जप है सपा थप है अकृता कृता अमृत अमृत है अमृत अमृत है करुणा कृत है कृता कृता तरणी दृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृता अमृत अमृत है अजबा कृत है अमृत अमृत है नरनायक है कल गायक है विश्वंबर है करुणालया है नृपनायक है सर्वपायक है भाव पंजन है अरगंजन है रब तापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कृता है अर्धार है परमात्मा सर्वात्म है आत्म वास है जस के जास है भुजंग प्रयात शांत नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राजराज नमो इंद्रेन्द्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेज नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज सिंह धाम सिंह शांत रूपे नमो ब्रह्म तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्र नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो नमो राज सिंह धाम सिंह शांत रूपे नमो ब्रह्म तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रे नादिंबूते अलंकार रूपे अलंकार लंके नमो आशासे नमो वाक भंगे अपंगी स्वरूपे अनंगी नामे दृपंगी दृकाले अनंगीय कामे एक श्री छंद अजय अलय भय भय भूव जुगनाश अकाश गंज बंज लख पख अकाल दयाल लेख पेख अनाम काम गाह गाह नाथि परमाथे जो नियम मोनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग न गंजे लेखे पजंग प्रयात प्रसंग नमास्तल प्रणामे समास्तल प्रणाशे गंजल नामे समास्तल निवासे नृगामंग बभूते समास्तल स्वरूपे गुकर्मंग प्रणाशी सुधर्मंग बभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणाशी ग्रीमल गनंदा समाज तुल निवासी अजायब बबूते विजायब ग्रीम हरियंग हरियंग ग्रीम रीम चतर चकर वारती चतर चकर भुगते सुजम पव सुभंग सर्वदा सर्व जगते दुगालंग प्रणाशी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अभंग बबूते चतर चकर वारती

प्रेरणा देते रहेंगे। कहाँ पे जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भगत ध्यान लगायो नहात फिर ओली सात समुद्र न लो गए उबर लो गवायो बास के बख्यान से बैठ के ऐसे ही ऐसे से बैठ बतायो साज कहो सुन ले सब है जिन प्रेम कियो तनी प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज धरियो सिर काहू ले लिंग धरे लटकायो काहू लख हर वाची दिशा मैं काहू पिछा गोसी सुनवायो कौ बदान को पूजत है पास कौ मृदान को पूजन आयो गूर करया और जो सब ही जाग श्री भगवान को भेद न पायो कौ बदान को पूजत है पास कौ मृदान को पूजन आयो गूर करया और जो सब ही जाग श्री भगवान को भेद न पायो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती जाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण हो इजत की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो ब्रत पार हमरे दोष्ट सब तुम कावो आप हाथ दै मोहे बचावो सुखी वसै मोर परिवार सेवक सिख सब करतारा मोर चरण कर दै करे सब बैरन कहो आज संगरे पूर्ण हो हमारी आशा दूर भजन की रहें प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न ध्याऊ जो वर जाओ सुतम दे पाऊ सेवक सिख हमारी दारी है चुन चुन सुतर हमारी मारी है।

प्रकट सब धारे, आप अपनी बूझो चारे, तुम सभी तेरे निरालम, जानत भेद भेद अरियालम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद नील नाद संबुदा का मूल चारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा, ताको कार बाहर अनुमानत, महामूढ़ का भेद न जानत, महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चिंत न पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पेन पेन दो देती, तुम्हारा लखन जाए पसारा, के सजा प्रथम संसारा,

सर्वठोर महो सहाई दोष दोग तेले बचाई खाड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दलो बारी सर्वठोर महो सहाई दोष दोग तेले बचाई।

अंतरात्मा है समा ले। आप षडसा रह परने गुरु ने वर्ण जाने कोई कहे नान गुणो संत सो सिख धर्म कोई। जे को गुरते विमुख हो गए बिन सतगुर मुक्त न पावे पावे मुक्त न होर था कोई। पुछो हुए किया जाए अनेक जूनी पर में आवे बिन सतगुर मुक्त न पाई। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु सब सुनाई कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाई। आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी दा गावो गुरु केरी बाणी आसर बाणी। जिनका नजर कर्म हो गए हृदय दिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पाणी कहे नानक सदा गावो यह सच्ची बाणी। गुर का शब्द तन है सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी का कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कहिंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आंख बखाणी हर हर नित करे रसना कहिया कछु न जानी। चित जन का हिरलाया माया बोलन पैर वाणी कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची।

अंतपूर्ण परमेश्वर सम्रांत शांत सर्वतर रमण नानक अगनाशन जगदीश्वर आदपूर्ण मदपूर्ण अंतपूर्ण परमेश्वर

छिन मह था पो था पदा तैस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रव्या सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई।

एक संतोषी जिन्हें सचो सच त्याया उन्हें मंदा पैर न रखियो पर शुक्र धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तू बच्ची सी अगला नित गए चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

रहमत काम दे दर तो हम कीर्त काम दे नानक कर्मा बहरे दर तो नलहनी काम दे एक मोल न बुझने अपना मन हुंदा आप बनाएं दे हों ताजी का नीच जात भर उत्तम जात सदाएं दे इन मंगा जो तुझे ते आएं दे इन मंगा जो तुझे ते आएं दे बोलो सत

खली खास के मिले तमस्तक लाई है कूड़ा लाल सजिया हो कुमन अलग से आई है फल से वे वो पाई है जो वे हितार कमाई है ये बोला पूरब लिखा था तो उतना दे पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव गवाई

शासन खत्म ते आया अना जनता जो वक्त छना हम कुदरे की जब तो पाया एक नानो तो मेल है एक आपो तो दुख आया गुरु कृपा से जाना जिथे तुझ आप बुझाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया।

सदगुरु विचों मारिया जितने लिया खसम संभालिया जिनका रूप देश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहा सतगुरु है बोलखा विले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया बोलो सतनाम गुरु वाहिगुरु।

हरि दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी तो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म न होवे परवान ता खसने का महल पाए सी खसने भावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दर्द है पैदा जाए सी ता दर्द है पैदा जाए सी बोलो सतनाम।

तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप हैं आप

फिर करो कोई पूजा फिर। करोड़ रुपया ऐसे वार दिता जाए ना तो आ जरा सुख है उन्होंने नहीं लग सकता जरा तुम प्राप्त हो गया। वड्डे तो वड्डा अमीर जरा सारी दुनिया का मालिक क्यों ना बने। कई इंद्र वार दिते जान ते आ चीज नहीं मिलती जी तुम प्राप्त हो गई। यह हुई जे बख्शिश नाल ते बचेगी शुकराने के नाल। हुई है बख्शिश नाल ते हिरदे च रहेगी शुकराने के नाल। जे जड़ा भी होमे आ गई तो यह चीज गवाच जाती है। कसूर उड़ जाता है, कसूरी उड़ जाती है और कशबू उड़ जाती है। रहेगी ये उसे जिसे शुकराने का प्याला रहेगा, शुकराने का भांडा बनिया रहेगा। यह कितने चीज रही है आ जी तुम्हें प्राप्त है शुक्र विच। सोना कितने रख दो लातों में, पेटियों में, डब्बों में। यह जो सत्संग का समय है परमेश्वर ने दिता यह कितने रहा है यह शुक्र विच। शुक्र किया आसान मनिया, तेरी खास मेहरबानी है, तेरी खास बख्शिश है, मैंने यह चीज दिती है उसे टिकी रहेगी। तो जे ये कह दईए कि तेरा की मतलब, मैं अपनी ताकत ना चीज ली है, अपनी सियाणप ली है, अपनी जतन ना ली है, तो उसे की हो गया हौ हौ करे ते आप जनाए, बहु कर्म करे किछ खाए न पाए, मनमुख मुग्ध करे चितराई, नाता धोता खाए न पाई, ज्या आया त्या जाति कर औगुण पछो तावनी। इस लिए आ जी चीज है ना यह शुक्र के भांडे में रही। जे होमे का भांडा चला जाए तो वो खराब हो के उड़ जाती है, क्योंकि होमे का सेक है। किसी पाले नू ठंडे पानी च पा दो, ढक दो, हेठा अग बाल दो, चाहे किन्ने भी पाए तुसी संपत पाए करो, पारे ने रहना ही नहीं उड़ जाएगा, क्योंकि अग का सेक नहीं सह सकता। होमे है अग, तो आ जी तुम चीज मिली यह है पारा। जे मर जाए तो कोड़ हट जाए, जे कच्चा खा जाए तो कोड़ हो जाए। यह चीज पारे वास्ते लिखी गई है। ये कदों तक साढ़े को ठहरेगा जिन्ना चिर यह किसी थर्मामीटर च बंद होया हो, जरा च टुट गया यह उड़ जाना इन लभना ही नहीं। इसलिए आ जो तुम चीज प्राप्त है ना सतगुरु सदा रखे, ये चार सदा ही बने रहन, पर यह ठहरेगी कितने शुक्र के भांडे में, दूजे थां तो यह उड़ जाता है। आओ फिर शुक्र आके धनवाद करिए, गुण गाइए, साडा आया हुआ सफला हो जाए।

0: केवुदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISP 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नू पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

না মিত্ররা লোদুয়ানি দিয়ে গেল। ख्याल करो दरियावां का रुख मोड़िया जा सकता है, लोग बदल सकते हैं। एक दरिया का रुख बदल के दूजे दरिया में शामिल होने कई किए गए। दरियावां का रुख मोड़िया जा सकता, लहरों का रुख नहीं मोड़िया जा सकता। भावें कल भर रही होंदियां ने पर बड़ी शक्तिशाली किसी के हाथ ही नहीं लगती, किसी के मोड़िया मुड़दियां ही नहीं। जिधर जा रही हो उस किनारे नाल टकरा के खत्म हो जाएगियां, राह च मुड़नगियां नहीं। आदत है मुड़दियां नहीं, गुरु ने बाणी भी चक दी पर जवानी लै नहीं गई। उनकी लहर वाला सुभा है, मूह मुहार है, अपनी मर्जी नाल चलन का उनका सुभा है, किसी की गल ना मननी उनका सुभा है, अपनी मर्जी नाल चलना। चल लगे जीव रूप स्त्री की आत्मा का भी वो सुभा बन गया। कई बार अपनी मर्जी कोई वर्त लेना दरगुजर कर जाइना इस ख्यालों भी चलो सियाना है, हूं से इन थोड़ा तू बच्चा थोड़ा। अपनी मर्जी वरतना चाहता है, अपना भला बुरा जानता है, हूं सियाना है वरत लैन दे। घर भी कोई बच्चा हो मां बाप की गल ना मनने, अपनी मर्जी नाल कोई बिजनेस कोई विहार करना चाहे उन्हूं बड़ा समझान ते फिर भी करना चाहे अमोड़ रहे अपनी गल ते ज्यादा बजद हो जाए ते कई बार मां बाप आखदे ने चलो हुण सियाना है कर लैण दिओ इहनूं मन मर्जी। पर नाल इक होर गल जुड़ जाए भी मर्जी भी अपनी वरते ते होवे भी सियाना, सियाना भी ना होवे समझ भी ना हो तो मर्जी भी अपनी बचे। लो आ दो लफ्ज़ जोबन ते बाली। जोबन का मतलब आप हुदरा पाए किसी भी ना मनने रा अपने ही उलीकने इवन परमार्थ धर्म की दुनिया में भी अपनी मत की वरतनी, गुरु की मत उसे भी ना लैनी। ख्याल करो किसी दिन सफाई थी जो धर्म का चंगा काम करना हो फिर भी गुरु को पूछ ले। एग्जाम्पल वजो गुरु ने बाणी विचार दिता, कहने लगे हरी चंद दानी करता चंगे कर्मों में एक कर्म, पर गुरु को नहीं इसको पूछया, इसलिए दुखों में पै गया। चंगा काम करता करता भी हरी चंद।

कोई मन मर्जी करता है, स्वभाव बने जोड़नी वाला स्वभाव है। जीव आत्मा का मुंह मुहार है, मन मर्जी अपनी मत वर्त दी, क्योंकि ये मत छड़नी बड़ी औखी। कल भाई साहब भी तो पढ़ रहे सन, मन की मत त्यागो हर जाने, यह बात कठैनी, ये गल बड़ी औखी है, कठिन है। हम जीव के अंदर दो सुभाव गुरु ने इकट्ठे कर दिए, कहने लगे मैं आ दो गल्लां देख रहा हूं।

बार बार रस्ता पूछन केवल क्वेश्चन ही मैं आम जिंदगी विच भी देखना आम जीवन विच देखना क्वेश्चन हर एक हिरदे विच पैदा हो गया सवाल पैदा हो गया धर्म का ही सवाल पैदा हो गया लाइना लग जाने जो उठी का अपना अपना सवाल लैके पर वो सवाल सवाल ही रहता है मेरे को पूछ लेना दूजे को होर कोई होर विद्वान आया कोई होर सवाल आया वो सवाल उनके को पूछ लेने पंजाब को पूछ लेने आप उठे तो उठी खड़ोते जवानी वाला समय गुरु कहते हैं जवानी सियानी हो कोई हर्ज नहीं इतने जवानी बाली है आप हुदरा पाने हर नाल सियाना पर कोई नहीं कहने लगे हे सतगुरु मेरे विच परेशानी है मैं तेरे को रोज राह पूछनी हां रब दे मिलाप दे प्रीतम दे दर ते पहुंचन वाले राह तेरे को रोज पूछनी हां पर मर्जी अपनी वर्तनी जवानी ते बाली दो चीजा इकट्ठिया हो गई

la mediación al calzón. मेरी परेशानी सुन ले कि मेरे अंदर भी हालत ये है, रात तेरे को ना रोज पूछनी है, रोज भूल जानी है, मन मर्जी वर्तनी है, जोबन भी है, बलपन भी है। हे गुरु, अरे मस्का मैनू हर हर नाम चेते करा दड़ा दे, दड़ा दे, हर हर नाम चिताए गुण, नाम है गुण, नाम है नमी, नाम है हुक्म, नाम है शक्ति, समूचा प्रभु दा रंग रूप स्वरूप सब नाम विच खलोता है। लगे हे सतगुरु, मैं फिर तेरे को पुछ के भी अपनी मर्जी वर्तना, ते मर्जी छड़ी नहीं जा रही, जवानी वाला सजा है, ते समझ है नहीं, मर्जी मेरी विच सियानप कोई नहीं, बाली है। इसलिए तू रोज पंथ दसना, मैं रोज पंथ पुछ के भी मंजिल नहीं मिल रही, रहमत कर मैनू हर हर नाम चेते करा दे, दृढ़ करा दे, ताकि मैं हरी दे मार्ग ते पंथ ते जिहड़ी मैं हुण तक समझ नहीं रही उंदे ते चल सका। हर हर नाम चिताए गुर, हर मार्ग चल, हर हर नाम चिताए गुर, हर मार्ग चल। हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चाले गुरु चाली, जिहड़ी चाली गुरु दसे उंदे ते किवें चलना। हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चाले गुरु चाली, अगले पासे कहने लगे सतगुरु दया करे, ये सतगुरु तेरी दया दी लोड़ है, तेरी हिम्मत दी लोड़ है, हर हर नाम चिताए गुर, हर मार्ग चाली, सतगुरु दया करे सुख दाता, हम लावे अपन पाली, अपने पल्ले लगा ले ते आखे नाल नाल मैं तुरिया जाना अगे अगे तू ही तुरिया पिछे, केवल राह दस देना होर लमेकवल की थी। राह दसने वाला भी बहुत चंगा है, पर उदो भी ज्यादा धनवाद ते शुक्रिया करी दा जेड़ा उठ के नाल ही तुर पवे, आखे ला मेरे पीछे पीछे तुरे आ मैं तेनू पुछा देना, उस तो वड्डी गल है। एक अपने थावे खलो के आख देवे ना पुराना राह ही तुरिया जा ते भुल जांदा है, अगों जाके फिर किसी होर कोल पुछण लग पई, कई बार पहले जिंदे को पुछे हो उनका विश्वास भी नहीं रहा, फिर होर किसी को पुछ रही है, तो बहुत ही थावे पुछण नाल कई बार कंफ्यूज हो जाए, पर आप भूली जाते। इस नाल चंगी गल यह नहीं कि जिंदे को पहले ही पुछे वो एना वड्डे दिल वाला एना रहमत ते दयालु होवे, उठ के नाल ही तुर पवे, आखे भलिया आ मेरे पल्ले लग मेरे पिछे पिछे तुर, मैं तेन तुर पचा आऊंगा। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ

cut it out, okay? It's cut it out, so come on, let me keep cutting. ये फिर तुम दसो तू वास कि मिलाप कि रात ये गुरु पंचम पातशाह जी तो अंदर जवाब देने लगे कहने लगे।

इस लई अपने इस शरीर दे जलन बल्कि गुरु ने बाणी उतार से सकन लगे ठंडी तत्ती मिट्टी खाई। शरीर की हालत तो उसको बाद ठंडी तो पाव पानी, तत्ती तो पाव अग, मिट्टी तो पाव खबर। कह लगे भावे ताने नु किसे तरह बिरे ला दे, भावे पानी विच जल प्रवाह कर दे, भावे अग विच जला दे, भावे मिट्टी विच दफना दे, तन ते ताने बल्कि इथों तक आख दिता जो मृतक को चंदन चढ़ावे उससे को कमने फल पावे, जो मृतक को बिस्का माहिर लाई वो मृतक का क्या घाट लाए, पानी दूर कर दिता। कहने लगे ओ भलिया किसी जीव ने नरक विच जाने जा स्वर्ग विच जाना है, उन्हें बहिष्ट विच जाना है जा दोल विच जाना है, ते मेरा रब जाने जिन करते काम किया सो जाने करता, तू ना परमम क्यों पिया हो। इसलिए किसे खुदावंद अल्लाह ताला नु प्रवान चढ़न लई, किसे नबी दी उड़ीक करन लई के मरण तो बाद कोई नबी आएगा मेरी गुआई पढ़ेगा, अल्लाह ताला मैनू बहिष्ट देवेगा, इस सारे सुपने छड़ दे, मैं तेनू दसना कि अल्लाह ताला किवें मिलदा, अल्लाह ताला किवें मिलदा।

राम कलमा लतीजा आनंद क्यों खा सतगुरु प्रसाद, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पार, सतगुरु का पाया सहज सुखी मन जिया। राग रतन परवार परियां सब जगामियां।

जाकर भरे भंडार सगले तटा जेवै आधार सत पुरख जाको है नाव मिटा टोट अग निमक जस गाओ बाल सुखाई भगत